साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे हैं।

तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज मिल

गया। बहुत धनाढ्य आचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग परीत, लश्कर तर्क

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले। पांच तरह का निर्धन पालना। पहला निर्धन पालना गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे चाती पायो, अगां अगां ज्यों प्रकरण आएगा, कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे जेड़े बंदगी वाले महापुरुष सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नूं किहड़े ढंग नाल पालदे ने, उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा है, असीं कितें पहुंच भी नहीं सकदे। उह अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण पहला निर्धन नूं पालना गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, इहदे विच कमजोरी ते नहीं। और दसवंध कढ़न तों बाद बड़ा सोच के लावे लाउणा किथे। किसे गुरुद्वारे की कार सेवा लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। लंगर लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। अजकल तुहाडे चों कई बीबियां ककारां लई सेवा देंदियां, ककारां लई, ये भी गुरु नूं पहुंचदा।

परम सत्कार को शासन। सतगुरु जी, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, इस पावन शब्द विच उस परमात्मा दे नाम दी सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्हां नूं मिलदा है जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही होंदा है ना जे दवाई खाई। दवाई लैके आ गए, डॉक्टर कोल गए,

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है पर किस तरह आठ पहर आराधी अठे पहर उदी आराधना करिए उदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नास होवेगा। डाक्टर भी कह दिंदा है ना दवाई ते दित्ती है ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक वारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहरदे संगतां नूं उपदेश करदे हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगता आईया एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिते गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। लाल चंद दर्शन करन आया गुरु हर कृष्ण साहब नूं देखिया

0: रत्नवा बारू भीत बनाई राजपद रत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुखमाया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु सब लच बिगड़िया ना है अजनु सब

मन मूर्ख अज हूं नहीं समझत सिख दे हार्योनी सिख दे हार्योनी नानक पाण।

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नूं उपदेश देंदे होए एक गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखिया? वो ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असीं अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे।

मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

0: के परमा विच मैं भुलिया फिरदा हां।
1: माया मोह परम पे पूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई।
0: सुत कहंदे ने पुत्र, दारा कहंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालक, मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के, तेरे नालों प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घर वालियां नाल लाया हो।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तेनूं भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे साहब।

परमात्मा साडे ते मेहरबान है, पर जे परमात्मा दी गल ही नहीं मननी ते परमात्मा खुश किवें होवेगा। आओ आपां ख्याल कर रहे हां असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि जिस वेले मनुख इस ख्याल ते पहुंच जांदा है उहनू कुछ ना कुछ मिलदा है, ते जदों ओ इस अवस्था ते होवे कि मेरे नालों चंगा किहड़ा हो सकदा है, ते फिर भाई गल नहीं बनदी। मैनूं ख्याल चेते आया तुहाडी झोली पावां, कहिंदे ने एक दफा एक बजुर्ग एक नगर दे बाहर दी लंघ रहा सी, ते पिछो आवाज पई, आवाज मारन वाला एक नौजवान सी। उसने आवाज मार के आखिया, ओ बाबा जरा रुक। बाबा जी रुक गए। जिस वेले वो बाबा जी रुक गए कोल आया, ते बाबा जी ने बड़े प्यार नाल बोल के आखिया, हां भाई दस तू मैनू रुकाया है, ते आवाज मारी है, की काम है? कह लगा, बाबा मैनू ए दस ए जिहड़ा नगर है एदे विच रहण वाले लोग किहो जाए ने, किहो जाए ने लोग? कहिंदा एदे विच रहण वाले लोग किहो जाए ने? मैं तेनू ए दसा, पहले तू दस जिथों तू आए उथों दे लोग किहो जाए सन, उथों दे लोग किहो जाए ने? कह लगा, जिथों मैं आया उथे बड़े माड़े लोग रहिंदे, बहुत माड़े, इसलिए मैं वो नगर छड़ के इस नगर विच आया, हुण दसो इथों दे लोग किहो जाए ने? बाबे ने जवाब दिता, भाई वापस चला जा, इथों दे लोग उदू भी माड़े, वापस चला जा। साध संगत इसे तरह एक होर प्राणी ने आके आवाज मारी, हुण आवाज दे विच वेखो अंतर किन्ना है। आवाज मारदे आखिया, बाबा जी मेरी गल सुन जा। जिस वेले ऐसी मिठी मधुर आवाज बाबे ने सुनी, बाबा रुक गया। हां पुरशा दस किवें आया ते किवें बुलाया? कह लगा, बाबा जी मैं एक गल तुहाडे कोल पुछना चाहना, मैनू तुसी दसोगे? कह लगे, हां जरूर दसांगा। पुछ की पुछना है? कह लगा, बाबा जी मैं ए पुछना चाहना, इस नगर दे लोग कैसे ने, इस नगर दे लोग किहो जाए ने? हुण बाबा जी ने जवाब दिता, कहन लगे, पुरखा पहले तू दस जिथो तू आए उथों दे लोग किहो जाए सन, जिहड़ा नगर तू छड़े है उथों दे लोग किहो जाए सन? ऐ कहन लगा, बाबा जी पुछो कुछ दा, जिथो मैं आया उथों दे लोग इन्ने भले सन, इन्ने चंगे सन, मन नहीं सी करदा मैं उथों आवां, पर बदकिस्मती जे मैं आ गया, पर मेरा मन यही करदा है जे फिर किते समा मिलिया रवांगा मैं उसे नगर विच, होर नहीं किते रहना, उथे ही रवांगा। पर तुसी मैनू दसो इथों दे लोग किहो जाए ने? हुण बाबा जी ने जवाब दिता, भले पुरखा जिथे तू आया इथों दे लोग बड़े ही चंगे, बड़े भले पुरश ने, तेनू बड़ा प्यार देनगे। कहन लगा, मेरा जीवन सफला हो गया। हुण तुसी हैरान होवोगे कि ओही बाबा इस नगर नू माड़ा आख रहा है, ओही बाबा इस नगर नू चंगा आख रहा है, इहदे विच राज की है? क्योंकि बुरियाई चंगियाई साडे अंदर है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਰਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਜੜ ਜਾ, ਉਜੜ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ।

हे माधो माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सत्संग तुम ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ। सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

हम पापी तुम पाप खंडो। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करन वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले, किवें चंगे हो गए। हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सब नालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुर ख्याल दे

सतसंगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम उपकारी। मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है।

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि हे मेरे मालक असी किहो जिहे अपराधी हां, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है, कहिंदे 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। सत्संग ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है। ते नाम मिलता कितों है आख्या जपन वालिया की संगत में तेन नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालिया की संगत में नाम तेरा आधार हो जाएगा साच नाम आधार। जिन्हों नाम का आधार हो गया फिर उदिया सारिया ही भुखा दूर हो जांदिया हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस हजूर बख्शिश करते हैं कि यह गुरु की शरण विचों मिल सकता है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदिया ने घड़े न आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तेन लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपोए की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई, सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए, गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया। जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाया। कंड ते हाथ फेरे है, अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई, बड़ा समा हो गया तैनूं उड़ीकदे आ, तैनूं बड़ा मैं झिड़किया, तैनूं मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है, पर बेटा बाद विच जाने आ कि तू की है। अचानक ख्याल आया, कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए, मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने, माता जी दी अखां बंद ने, हाथां विच चोला है। आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै, आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया, लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां, सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्गा, घुट के छाती ना लाया, अथरू किधे रुकन। कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सीह के रख दी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई, संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए। ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

जद इतने बचन कहे भैन जी ए बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता। साध संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है। इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले। साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलदा है और इस प्यार नूं ओह ही जानदा है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जांके अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती है। भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले दी कि ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने